0: आज पपीते हो गया हमको, आज पपीते हो गया हमको,
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा, प्यार प्यार प्यार ओ राजा, प्यार प्यार प्यार
1: कलुआ बाबू जी।

0: दादी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो।
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज पति से हो गई आंखों, आज पति से हो गई आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: ले डर के आया कदम आई जड़की हम तो खेले डर के आया कदम आई जड़की हम तो खेले पहले ही बाजी न गए हम पहले ही बाजी न गए हम
1: क्या
0: हार हार हार ओ राजा हार हार हार ओ राजा हार हार हार आज किसी पे हो गई आंखें आज किसी पे हो गई आंखें चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए डीरा टा डीरा

याद न जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हित हित हित की आए, तबीयत बिटकी बिटकी जाए। दिलाता दिलाता।

0: होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
0: किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए।
2: दिला का दिला का जो जो जो जो दिला दिला का दिला का जो

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला ता दिला

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला दिला का दिला का जो

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दिलाता

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का जो जो जो जो जो दिला की

खुदा मगर तुझसा न पाया कोई। हाँ, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे।

तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का भला। लड़की की बात बढ़ती

केला जान केला लोगो ये नगरी अनमोल पुत्र ढोल धमाधम बाजे भीतर पूनम बोल जी मुंह चावल तेल की रखता है एक यहाँ पर बोल घोड़ा और का धोखा भैया।

बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना। मेरे पीछे पड़ा है जमाना, है बड़ा मुश्किल।

बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना, मेरे पीछे बड़ा है जमाना, है बड़ा मुश्किल है।

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या करे